मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: बिल तो दक कम फसे है गोते म्योती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला ददु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हा बिल तक फैसा दक का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अधि मीडिया नेट बिल कस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेटे देने मस दिबावायरु बिल नु देखी गेंग लारी वीनुए नेंगी गेंग उले का नुझे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही
1: इस्लामी उदरें
2: मी गेनेस्तिनी नोवेल्टी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड उन शाही कोफवा हुसैन अब्दुल रहमान हुसैन खतीब तकुरफान तर्जमा कुरेवे फाफत फुसवा कंतता गदी हे अमल तक लिबेनी विसवाब मी फोटोकवादी उनता खुशाला दिनी हसन खली
3: दिवे एफएम दिवे नायकु नुमदिह एके मेगाहर्ट्ज़

घूमते हो, किस घड़ी को ढूंढते हो, एक पल को ठहर जाना, जो कभी फुर्सत मिले तो, किनसे शिकवा है गमों का, किनसे है खुशियां जुड़ी, जैसे भी गुजरे थे दिन वो, जिंदगी में अब नहीं।

0: சரக்கு பலாலானி தயாவிமானோ பூமி பலைத்து பாராய்ச்சி தோப்பிவே.
1: ஓகே ஆ ஹம ரங்களே தோபி ஆசேனு எஹெம் விம ரங்கள் வானேனு தோ தென் தோபி மி லவ்ஸ் கி எம் கின லவ ए लव मी कोमे लव एक गवेस फार एक हम हिमेनी दाने दो आम को हम हुरी हाल लव गेस लोबी बेनु कुरे दो
0: बेनु बे अहुन दे वाही के वर की ना लव तक के एक बाबू तो वी म दो असो सी कुडी ना गानो गे
1: आहा कुलिए कवी म दो एहे वी मही गायन तो के लव कोंबे कन हास को लाने आन तो
0: हास को लाना समाय दें. I don't want to say to me, I am not so lonely.

0: ईशा सुवाने कुरंता
1: कब्बला
0: दिवे ही बहुगा सुकुं कुरे व्या कुरता की कोबा
1: अलिफु सीनु नूनु ता शवियन
0: रंगलो फेमवेरुं एमे मैक को बुनाने की हिने
1: नाने फुलफिल लेवो
0: वारा रंगलो वहे ता फेंडने को मैं बुनुमा की कोबा
1: लिबे फुर्सत के बेनुं हिफु माटु कब्बला की कुरं कुरा सुवाले तमी
0: मी तैयार वानी दिवे ही फे मुंगे नस्ते शवियनी प्रोग्राम
1: शवियनी प्रोग्रामे दिवे ही बहुगा सुवालो अन्ना कोंगे ने को अन्ना नी
0: कोम में हुकुरु आदि होनी हिरु दुआ हेगेरे अग्गड़ी तीरी हुगा
2: शवियन

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: लोभी लोभी